हमें दादो से मंदिर का किसी अकल से इसमें का सा किसी या आज नगंगार बेचारा है